पुंशतधायि समाहितासो सहस्रधाय समिते समाहितासो सहस्रधाय समिते शतशश्चैव सहस्रश्च प्रतितिष्ठति शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति य एतमग्

0: जानुदग्निमुत्तर वेदीं खात्वा
1: जानुदग्निमुत्तर वेदीं खात्वा जानु

0: रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति
1: रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति
0: पुष्करपर्णगुं रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति
1: पुष्करपर्णगुं रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति पुष्करपर्णगुं रुक्मं पुरुषमित्यु